इन दोनों के युगल स्वर। जी हाँ, और म्यूजिक है रोचक कोहली का, और इनका साथ दिया है विक्रम नेगी ने, और साथ ही बोल हैं मनोज और आरपी दीवान के।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्यार है तो है का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और इशिता विश्वकर्मा ने। संगीत दिया है रोहन कुमार ने और गीतकार हैं धीरज कुमार।

आइए श्रोताओं, अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जहर से। इसमें आप सुनेंगे श्रेया घोषाल को, और इसमें संगीत दिया है अनु मलिक और रूप कुमार राठौर ने। गीतकार हैं सैयद कादरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जहर फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ दी थी उदित नारायण ने। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की दीजिए हमें अनुमति। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। श्रोताओं, समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपने सुना दीप सुमन की आवाज में। आइए अब हम मिलकर सुनते हैं किशोर धीमान की आवाज में ये अगला लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर। आइए अगला लोकगीत सुनते हैं कुशा शर्मा की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप पहाड़ों के सुर, और अब इन सुरों में एक सुर और जुड़ने वाला है, और वो सुर है करनैल राणा का। तो आइए अब मिलकर सुनते हैं ये अगला पहाड़ी लोकगीत।

आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच की आवाज़ में।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर। अब समय होने वाला है 11 बजे का और आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। आज शोकोद्गार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पिछले कल सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते नहीं चल पाई थी, इसलिए आज शोकोद्गार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने सड़क, आपदा राहत, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आर्थिक प्रबंधन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई अहम प्रश्न पूछे हैं, जिसका सरकार जवाब देगी। इसके अलावा नियम 62 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 130 के अंतर्गत दो प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार है। विपक्ष कांग्रेस सरकार पर वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत अपमान करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर कल सदन के भीतर और बाहर काफी हंगामा देखने को मिला। आज भी सदन में इसी को लेकर हंगामा हो सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। इधर प्रदेश में भी जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी का पूरा ब्यौरा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और विधानसभा के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सुधीर शर्मा से कल विजिलेंस ने करीब 2.25 घंटे पूछताछ की। विजिलेंस द्वारा उन पर की गई कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर शर्मा ने सरकार और विजिलेंस की कार्यवाही पर सवाल उठाए। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र चलने के दौरान किसी विधायक को इस तरह बीच में बुलाना पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं और जांच में पूछे जा रहे हर सवालों का जवाब दिया है और तथ्य जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने आएंगे।
2: जो विजिलेंस को पूछताछ करनी है उसमें जो उन्होंने पूछा है वो उनको सब पहले भी बताया है। आज

0: बता दिया है।
1: पर ये पहली बार हुआ है कि जब सत्र चल रहा हो और सत्र के दौरान जो है वो किसी भी विधायक को इस तरह से बीच में बुलाया जाए। तो ये जिस तरह से वर्तमान सरकार का ये रवैया बन गया है कि भाई विपक्ष की आवाज को दबाना है, ये लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जो तथ्य होंगे वो जनता के, प्रदेश की जनता के सामने आएंगे, उसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं।
2: पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से कुल्लू जिले के विकासखंड बंजार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं व वित्तीय जागरूकता पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर के दौरान महिलाओं को पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित व प्रभावी उपयोग करने और उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में लगभग 70 महिलाओं ने भाग लिया। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, वहीं चंबा, शिमला व हमीरपुर जिले में बारिश का समाचार है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा, मंडी व बिलासपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से राज्य में 99 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा 7 बिजली ट्रांसफार्मर और 66 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गूंज पहाड़ों की।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों की गूंज प्रवेश के साथ। श्रोताओं अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऋषि कुमार की आवाज में।

103.4 MHz पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों की गूंज। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब मिलकर सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

आइए श्रोताओं, अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म लक्ष्य से, जिसमें आवाज़ दी है शंकर महादेवन और सोनू निगम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म परदेसी बाबू का ये देशभक्ति गीत। आइए श्रोताओं, अब हम मिलकर सुनते हैं फिल्म केसरी से ये अगला देशभक्ति गीत, जिसे गाया है बी पराग ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर ही फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज में गाए फिल्म जमीन आसमान की इस गीत के साथ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म बड़े दिलवाला में।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और ये रहा सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है बाबू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार प्यारी सखियों, आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी। और श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी प्रवेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद छोटी लगे लेकिन हमारे जीवन में उनका असर बहुत बड़ा होता है। सखियों, जिंदगी कितनी खूबसूरत पाठशाला है ना। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है और हर परिस्थितियाँ हमें जिंदगी का एक नया पाठ पढ़ा कर जाती हैं। कोई खुशी हमें मुस्कुराना सिखाती है तो कभी कोई मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। कभी किसी की कही हुई छोटी सी बात दिल में उतर जाती है तो कभी हमारा अपना अनुभव हमें ऐसी सीख दे जाता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा पाती। और इसी सोच के साथ सुनो सखी में हमने बनाई है अपनी खास माँ की पाठशाला। ये ऐसी पाठशाला है जहां ना कोई घंटी बजती है, ना कोई होमवर्क मिलता है और ना ही किसी परीक्षा का हमें डर होता है। यहाँ हम बात करते हैं जिंदगी की, घर परिवार की, रिश्तों की, बच्चों की और हमारी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों की और उन आसान बातों की जो हमारे जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा आसान और थोड़ा खुशहाल बना सकती है। सखियों, आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हमारे घरों में भी बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके में भी बहुत से बदलाव आ गए हैं। आज हमारे हाथ में मौजूद एक छोटा सा मोबाइल हमें दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकता है। हम कुछ ही पलों में खबर जान सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ सकते हैं और अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन सखियों, हर सुविधा के साथ एक जिम्मेवारी भी आती है। किसी चीज़ का होना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। और आज की हमारी माँ की पाठशाला में हम इसी बदलती हुई दुनिया से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात पर चर्चा करेंगे। तो आप भी कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज की बातचीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन से जोड़कर सोचने के लिए है। चलिए सखियों, चाय की एक प्याली हो जाए, मन को थोड़ा आराम दें और शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी माँ की पाठशाला। तो सुनते रहिए सुनो सखी, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa. सखियों, इस प्यारे से ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माँ की पाठशाला में। और आज की पाठशाला में हमारी माँ हमें एक ऐसी चीज़ के बारे में समझाने वाली है जो आज लगभग हर घर का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यानी सोशल मीडिया। तो आइए आज माँ से ही पूछते हैं कि आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करें ताकि ये हमारे लिए सुविधा बने ना कि परेशानी। आओ बेटियों, बैठो मेरे पास। आज मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी या कठिन बात नहीं बताने वाली, बस अपने घर की छोटी सी बात बताऊंगी। देखो बेटा, जब हमारे समय में कोई याद आता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, जवाब आने में कई दिन लग जाते थे, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया और अब सोशल मीडिया आ चुका है। दुनिया हमारी उंगलियों के एक स्पर्श पर आ चुकी है। दूर बैठी बेटी को देख सकती हूँ मैं, पोते पोतियों से वीडियो कॉल पर बात भी कर सकती हूँ। तो बेटा, मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कहती, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि अच्छी चीज भी अगर हद से ज्यादा हो जाए तो परेशानी बन जाती है। हाँ, लेकिन माँ, सोशल मीडिया तो आज हमारी जरूरत बन गया है, फिर हम इसका सही यूज कैसे करें? देखो बेटा, कभी हम कहते हैं बस 5 मिनट मोबाइल देख लेती हूँ, फिर एक वीडियो आता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कब खत्म हो गया। इसलिए मोबाइल उठाने से पहले खुद से पूछो, मुझे अभी मोबाइल की ज़रूरत है या सिर्फ आदत के कारण ही मैं मोबाइल उठा रही हूँ? ज़रूरत पड़ने पर ही आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है और माँ से ज़्यादा समय की कीमत भला कौन समझ सकता है। बिटिया, माँ की बात याद रखना, खाने की मेज पर खाना हो, मोबाइल नहीं। बच्चा अपनी कोई बात बताए तो उसे ध्यान से सुने, पति घर आए तो कुछ समय उससे बात कर ले, और घर में कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी बात सुनाना चाहे तो उसे भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि मोबाइल पर वीडियो दोबारा देखा जा सकता है लेकिन जो वक्त निकल जाए वो लौट कर कभी नहीं आता। माँ कहती है, बेटा मोबाइल तो हम हर दिन चार्ज करते हैं, कभी रिश्तों को भी चार्ज करने की चिंता किया करो, ये रिश्तों की बैटरी भी समय और प्यार से ही चार्ज होती है। बिटिया, मोबाइल फ़ोन पर आने वाले सभी मैसेज ठीक हों ज़रूरी नहीं। हम क्या करते हैं, बिना चेक किए या पढ़े मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ठीक नहीं है बेटा। पहले सोचो, फिर भरोसा करो और उसके बाद ही आगे मैसेज सेंड करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और सोशल मीडिया पर लिखा हर शब्द भी सच नहीं होता। उनका एक गलत मैसेज किसी दूसरे के लिए परेशानी बन सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: सखियों, माँ अपना चौथा सबक देते हुए कहती है कि बेटियों ये बात बहुत ध्यान से सुनना, सोशल मीडिया पर अपनी हर जानकारी साझा बिल्कुल मत करना, अपना एड्रेस, बैंक डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ साझा कभी मत करना, और अगर कोई अनजान व्यक्ति मैसेज करके दोस्ती करने की कोशिश करे तो अलर्ट हो जाओ। माँ की एक बात याद रखना, ऑनलाइन दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, इसलिए भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ। बच्चों को प्यार से समझाएं कि अगर आपको कोई मैसेज, गलत फोटो या धमकियां दे रहा है या कुछ छिपाने को कहे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स को भी बिना डांटे बच्चों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा ये सोचने लगे कि माँ मुझे डांटेगी इसलिए मैं नहीं बताऊँगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखो बेटा, सोशल मीडिया को बस टाइम पास मत समझो, इसे आप खाना बनाना इससे सीख सकती हैं, योगा सीख सकती हैं, कोई भी नई लैंग्वेज, और अपने टैलेंट को भी आप इम्प्रूव कर सकती हैं, नॉलेज ले सकती हैं। आज घर में बैठी एक महिला भी अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा सकती है, बस ज़रूरत है सही जानकारी और सही सोच की, सही दिशा की। और मेरे बच्चों, मोबाइल हाथ में रखो, दिल में नहीं। मोबाइल तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाए, ज़िंदगी को चिल्लाए नहीं, इससे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करो। सखियों, परिवार के साथ बिताए पल आपके लिए हमेशा एक अच्छी यादों के रूप में आपके साथ रहेंगे। इनका कोई लाइक नहीं होता, इनका कोई शेयर नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत पूरी ज़िंदगी होती है। सखियों, माँ की पाठशाला को देते हैं अब विराम और सुनवाते हैं आपको ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

श्रोताओं, पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जहां बात होती है खान पान की। सखियों, आज रसोई में कुछ ऐसा बनाने का मन है जो दिखे पिज्जा जैसा लेकिन स्वाद दे बिल्कुल दक्षिण भारत वाला। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म, नरम और कुरकुरा उत्तपम। ऊपर से रंग बिरंगी सब्जियां और साथ में नारियल की चटनी। बस फिर क्या है, नाश्ता हो या शाम की भूख, मज़ा आ जाएगा। सखियों, पहले तो नोट कर लीजिए इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप इडली या फिर डोसा बैटर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर भी बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च भी आप बारीक कटी हुई ले लें, और थोड़ा सा धनिया। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं और थोड़ा सा तेल। सखियों, अब सुनिए विधि। सबसे पहले इडली या डोसा के बैटर में थोड़ा नमक मिलाएं। अब तवा गरम करके उस पर हल्का सा तेल लगाइए और बैटर को तवे पर डालकर थोड़ा मोटा गोल आकार दीजिए, क्योंकि उत्तपम की असली पहचान ही यह है, इसका मोटापन। अब सखियों, ऊपर से प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया प्यार से बिखेर दें। इसे आप हल्का हल्का सा दबा दें ताकि सब्जियां जो हैं बैटर से चिपक जाएं। सखियों, अब इनके किनारों पर थोड़ा थोड़ा तेल डालिए।

गैस लो कर दीजिए और नीचे से सुनहरा और ऊपर से सब्जियां हल्की सिक जाएं तो ध्यान से इसे पलट दीजिए। फिर कुछ देर दूसरी तरफ से भी सेक लें और लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल उत्तपम। इसे नारियल की चटनी, सांबर या फिर अपनी किसी भी पसंदीदा चटनी के साथ परोसिए। तो सखियों, आज की रसोई में बना ऐसा उत्तपम कि प्लेट भी कह उठे एक और दे दो ना। पर अभी तो हम आपको एक गाना सुनवा सकते हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

तो सखियों, आज की माँ की पाठशाला में हमने सीखा कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, बस ज़रूरत है उसे समझदारी और सावधानी से यूज़ करने की। और खान पान में हमने जाना स्वादिष्ट उत्तपम बनाने का आसान तरीका। इन्हीं प्यारी और उपयोगी बातों के साथ अब मुझे यानी प्रवेश को दीजिए इजाज़त। कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुँचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अगली मुलाकात तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: क्या बात है। अभी अभी एक कमेंट ही आया है कि वक्त के इस गाने से चेहरे पर खुशी छा जाती है क्योंकि इस गाने में बजा पियानो इनॉक डैनियल साहब का बजाया हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि बीते दिनों जब मैं पुणे गया तो इनॉक डैनियल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बहरहाल एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि इस गाने में साधना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो लिख रही है कि अभी तो राखी आ रही है और अपनी बेटी का इंतज़ार है, वो अपनी नन्ही परी के साथ आने वाली है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि राखी है इसलिए मैं अपनी बहनों और बेटी का इंतज़ार कर रहा हूं। एक श्रोता को जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का इंतज़ार है। तो इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिनके ससुराल वाले आ रहे हैं और वो त्रिकोणीय फल बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो आज कहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके घर कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें उनके आने से खुशी है। एक श्रोता है जिन्हें कुछ पत्रिकाओं की ऑनलाइन उन्होंने उनके ऑर्डर दिए थे तो उनका इंतज़ार है, यानी आंखों में चमक तब आएगी जब वो मैगजीन्स आ जाएंगी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रही हैं कि मैं आलसी होना चाहती थी लेकिन आज कोशिश किया और पहली हल कर ली। आज की इबारत कठिन है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कठिन आज की इबारत बाकायदा है और बहुत ज़्यादा कठिन बनाई गई है। चलिए कठिनाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी कठिनाई की तरफ बढ़ते हैं। एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ। आप में से जो लोग ईमानदारी से बताना चाहते हैं बताएं कि आज कौन है जो उनसे रूठा हुआ है। पढ़ने जैसे संदेश होंगे तो हम यहाँ पढ़कर बताएंगे, क्या पता ये संदेश सुनकर रूठा हुआ कोई मान जाए। दूसरी चीज, रूठे हुए को मनाने का आपका फेवरेट तरीका क्या है?
1: देख

भाई कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूँ, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ कि सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूँ। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने मनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो ज़रा लिख दीजिए, हम ज़रूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत ईजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाएं तो फिर बात ही क्या है, व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है। चलिए अब ये है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीज़ें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज़्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा

इस बारिश में सबसे ज्यादा भीगने का मजा आप में से किसने लिया है ये जरूर बताइए।

भाई, हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं, तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है, तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगना भी बड़ा मज़ेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल, कपड़े, जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मुझे भीगना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं, पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाएं, सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मज़ेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मज़ा आता है। बहरहाल, खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हों तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि धर्मशाला ओवरब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा

एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज़्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूँ और जादू की झप्पी देता हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ सीज़न की बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मज़ा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है, लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए?

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है, जहाँ राम की पौड़ी पर बारह महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो नर्मदा जी काफ़ी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा

0: एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय तीन जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का अस्सी। फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि बीते तीन महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तमहिणी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। और जहाँ तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर। क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में हैं जो बारिश का इंतज़ार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता हैं जो इंदौर में हैं, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मज़ा। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास करहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मज़ा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता हैं जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल अब तो वहाँ जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह हैं उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंत्या टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मारवे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएँ भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है?
1: रंगीला रे,
0: क्या ये गाना? इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मज़ेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताज़ा फिल्म कौन सी है। ताज़ा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो कितनी मज़ेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताज़ा रिलीज़ हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी हैं। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बंटवारा 2 देखी है और आवरापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होंठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका, वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारा हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओहो हो हो, नमकीन गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज़ लगाई, पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया, तो समझ में आया कि कुछ सफ़र पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं। जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है, उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई थी, उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं। अब जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा। इस गाने के संगीत का

जब मन बहुत उदास होता है तो होठों पर कौन सा गाना सजता है? क्या उदासी में कोई गाना आपके होठों पर सजता है?

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है, और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार, कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू, उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहाँ से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी हैं और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने जुबा पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता है जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये एक श्रोता को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमाघर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो

जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं, शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज़, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को, जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा।

एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गज़ल जो है बहुत तरन्नुम में सुनाया करते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नज़र के

लगते हैं सीधा सीधा, दिल पे निशाना लगता है और आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली, बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है, मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूं तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज की तेज़ प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज़, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा। यहाँ पर एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्हें मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने ज़माने के लोग हो गए, उस ज़माने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, आपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, ज़रा सामने तो आओ चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्हें उदास गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस, दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है, और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाज़ा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतज़ार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी ये बताइएगा। दूरदर्शन के ज़माने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी। एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्ज, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाज़त देता है कि अब हम चलते हैं।

0: त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घमंड, हाँ घमंड यानी अहंकार, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो अत्यधिक आत्मसंतुष्टि या अपनी उपलब्धियों जैसे कि धन, पद, रूप या ज्ञान के गलत इस्तेमाल से पैदा होती है। ऐसे लोग हर समय अपनी महानता साबित करने के लिए अक्सर दूसरों की कमियां निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई इन्हें इनकी गलती बता दे तो ये बहुत जल्दी आक्रामक रुख अपनाने लगते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते क्योंकि वे दूसरों को सम्मान नहीं देते। ये लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें खुद से कमतर आंकते हैं। इन्हें हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत होती है। देखा जाए तो अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है क्योंकि ये दंभ हमारी बुद्धि और विवेक दोनों को भ्रष्ट कर देता है और अंततः ये व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बनता है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

यानी अहंकार, जिस पर आज हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु इसलिए है क्योंकि ये आपकी यानी हमारी सीखने की क्षमता को नष्ट कर देता है, विवेक को भ्रमित करता है और रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वह दूसरों के अनुभव और सलाह को कमतर आंकने लगता है और हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। साथ ही ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी ये मान बैठता है कि मैं ही करता हूँ। बाइबल भी बार बार घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अक्सर घमंड से भरा, आत्मकेंद्रित और दूसरों को तुच्छ समझने वाला होता है। लेकिन ये सभी बातें, ये सभी आदतें यानी ये अहंकार मसीह के स्वभाव के विपरीत है।

0: मुझे तू भी न जाने
1: कदर मेरा है कुंदन,
0: मेरा दिल भी है चंदन,
1: मैं चंदन की खुशबू हूँ,
0: मैं चंदन हूँ।

अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हम सभी जानते हैं। इसके विपरीत सरलता और विनम्रता हमारे सबसे सुंदर और प्रभावशाली आभूषण हैं। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व निखर कर आता है। विनम्रता न केवल हमें दूसरों को सम्मान दिलाती है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के दरवाजे भी हमेशा खुले रखती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दुर्योधन, जी हाँ दुर्योधन, हर सलाह को साजिश समझता था, क्योंकि अहंकार सवाल सुन नहीं पाता। जो खुद को हमेशा सही माने उसका अंत अक्सर अकेला होता है। इसलिए याद रखें, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अहंकारी नहीं, विनम्र बनिए। दूसरों में कमियां खोजने के बजाय अपनी कमियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक छिपी हुई ताकत और महानता की पहली सीढ़ी है।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। प्रतीक्षा समाचारों की।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22

0: भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने

0: डेवलपमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
0: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है।

0: आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14

0: लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और ललित महमूद की आवाजें शैलेंद्र कपूर, संगीत सलील चौधरी का। सदाबहार नगमे विविध भारती।

0: मजू सुल्तानपुरी के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज। अशोक भोसले की आवाज थी। फिल्म का नाम था सुजाता।
1: रिमझिम बरसे पानी आज मोरे अंगना।

That's it.

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।

0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

0: अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: चरित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
4: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
3: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 MHz पर दिन के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी आज हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के खिलाफ विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय गान के अपमान के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सदन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, जो बेहद निंदनीय।

0: कंपनियां हैं। भाजपा के विधायक असल मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है।
1: राष्ट्रीय गान का अपमान किया है पूरा कांग्रेस विधायक दल, इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है ये जो सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है से उसका ध्यान भटकाना चाहती है।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायकों ने भी सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस की CWC की बैठक में केवल दो ही छंद गाने का निर्णय लिया गया है, जो कि कानून के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा सदन कांग्रेस की CWC के मुताबिक नहीं चलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा वंदे मातरम का अपमान सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का लगातार गला घोंट रही है।
2: पूरे देश में वंदे मातरम के संदर्भ में बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि कानून बन गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल पारित होने के पश्चात, और 15 अगस्त को पहली बार देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के साथ जो है उस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो सीधा संदेश है कि वो पूरे देश के अंदर उसी रूप में लागू होना चाहिए जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को हुई, और ये सत्र जो मानसून का हमारा शुरू हुआ था यहाँ वंदे मातरम से शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछले कल विधानसभा में आने से पहले एक बात कही है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये फैसला हुआ कि हम दो ही स्टैंजा गाएंगे, पूरे वंदे मातरम गायन का हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो वंदे मातरम के प्रति अभी भी सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का भाव नहीं रखते।
0: इस बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक सोमवार दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, हालांकि राज्य के कई स्थानों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा के चलते भूस्खलन के कारण 124 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 138 बिजली ट्रांसफार्मर और 36 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 23 अगस्त को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। चंबा जिला में मोहल्ला पक्काटाला बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार पक्काटाला बालू संपर्क मार्ग पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के समीप सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते सुरक्षा के दृष्टिगत इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालना को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये अभियान इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके तहत पात्र नियोक्ता उन कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन कर सकते हैं जो निर्धारित अवधि के दौरान EPF कवरेज से बाहर रह गए थे और घोषणा की तिथि पर जीवित हैं या प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं शिमला जिला की चिट्ठी। लेखक हैं योगराज शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
4: अगस्त महीने की शुरुआत शिमला जिला में राजनीतिक सरगर्मी से हुई। 3 अगस्त को शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव टल गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक नहीं हो सकी। 25 सदस्यीय जिला परिषद के एक भी निर्वाचित सदस्य के बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचने से चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकी। निर्धारित कोरम पूरा न होने

0: के कारण अब चुनाव अगली तारीख के लिए टल गया है। मामला कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी बैठक के लिए 50% सदस्यों का होना आवश्यक है, उसी स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो सकेगा। 4 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के निर्माता व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल प्रदेश के निर्माण और उसके संरक्षण में ऐतिहासिक व अतुलनीय योगदान रहा है। शिमला में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। शिमला में 6 अगस्त को पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस होने तक संघ पीछे नहीं हटेगा। 5 अगस्त को हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षक संघ और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन समिति के गठन में देरी हुई है, ऐसे में सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा सीटीओ चौक से शुरू होकर शेर ए पंजाब मॉल रोड होते हुए रिज मैदान महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और आजादी के रंग नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव और मजबूत करने की आवश्यकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुराने बस स्टैंड से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में 18 इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न रूटों पर चलेंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण में बसों की कमी लंबे समय से बनी हुई थी और इस मांग को उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर रखा था। वहीं अगले फेज में सुन्नी इलाके के लिए करीब 14 बसें जल्द शुरू की जाएंगी। 150 किलोमीटर की चार्जिंग लिमिट के कारण दूर दराज के रूटों की मांग को डीजल बसों से पूरा किया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने हिमाचल के ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक राजन कंबोज ने सस्ते प्लान को लेकर कई घोषणाएं की। बीएसएनएल ने 1 रुपए में सिम के साथ 24 दिन की वैलिडिटी का नया ऑफर लॉन्च किया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में शिमला पुलिस की पुरुष और महिला जवानों की टुकड़ी, होमगार्ड पुरुष और महिला जवानों की टुकड़ी, यातायात पुलिस, एनसीसी बॉयज और गर्ल्स, एनएसएस बॉयज और गर्ल्स, भारत स्काउट एंड गाइड और प्रदेश पुलिस बैंड ने हिस्सा लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय रेखा रत्नानी, अभय भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी है। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और ब्रिजकांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनक।

का नतारा की, इसकी अलावा जी यही एक नाम है, और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है, और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से, और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इसी बार
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से परमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना इंदीवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज़।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से। ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार। ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू, पहलवान की महेंद्र सटकरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौलका से, और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा, रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई। अब देखो, ये देखो, जगह जगह से टपक रही है।
1: अरे मैं कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी, लगता है बहुत खराब थी। खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
0: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
1: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
0: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
1: हाँ?
0: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
1: क्या क्या क्या? अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी? है कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
1: कौन है? देखूं तो जरा।
2: कौन है?
1: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
1: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
1: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है। हाँ। अभी चलना है।
1: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
0: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
1: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
0: पागल खाने से क्या?
1: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
0: आत्महत्या?
1: हाँ।
0: कब? जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मरकर भी चैन नहीं लेने देंगे।
1: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
0: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना।
1: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
0: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
1: बक बक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
0: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
1: हाँ हाँ
0: ये लीजिए।
1: हाँ हाँ अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। हाँ,
2: अरे
1: शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, ओ ना अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया। अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम। हा? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब,
0: अच्छा।
1: आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: ए देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो, ओ खिलकी।

0: का ग्लास साहब उसी ने तोड़ा, माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
1: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बेटा को घसा कर लीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
0: ओरे बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
1: मैं पागल नहीं,
0: इधर आ जाओ, तुमका मुर्दा है।
1: पागल नहीं हूँ,
0: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कौन है?
0: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ,
2: लेकिन लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगते।
0: हाँ, नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता। पर हाय
2: हाँ, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
1: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो।
0: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी, खुश बाबू आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
0: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हाँ, हम जाता है।
2: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी?

0: पिताजी, पिताजी, ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या।
0: और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या, तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचिस।
2: जीवन, पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल पागल हो
0: गया हूं मैं। पागल, मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इसका भाव उठाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़, छोड़ माचिस को।
0: नहीं,
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: छोड़ दे माचिस,
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: आग लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। नीच बेहुदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
0: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
2: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
0: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
2: इस तरह की औलाद से

0: तुम बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तोड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही विवेक नगर में, मेन मार्केट में ही दुकान है और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
2: 15 लाख? फिर
1: जी बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे, अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ, 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
3: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से आ मरा ये।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
3: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
4: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई हैं।
3: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
3: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो आदेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
3: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
1: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
2: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
1: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
3: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
2: अरे भाई तुम तो, भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
3: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
2: असंभव तो नहीं है?
3: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
2: वो नवजोत चिकित्सा, अच्छा अच्छा वो पागलों वाला अस्पताल, अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है।
3: और उसका वार्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। तू ठीक है ना?
2: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
3: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
1: क्या अम्मा, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
3: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
2: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
3: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
2: खा चुके वो ये चूर्ण?
3: अरे खाना तो खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यास से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
2: क्या?
3: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
2: लेकिन अवधेश, पागल खाने

0: मैं तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
1: और क्या?
2: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
0: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
1: और क्या,
2: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
0: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
2: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
0: अच्छा? मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
2: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
3: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
0: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
2: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
3: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
4: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? हैं, यहीं बैठा है।
3: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
5: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
3: संपत,
0: नमस्ते भैया।
3: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
0: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे?
3: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
0: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
3: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
0: जी।
3: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
0: यानी एक और मुसीबत।
3: हाँ, एक और मतलब?
0: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
3: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
0: क्या बताऊँ, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गईं। रोज़े रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
3: लेकिन लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
0: हाँ, मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
3: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो, किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
0: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
3: अरे नहीं नहीं,

0: तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जगह सही ऊपर से होगी।
1: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
0: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
1: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊँगा।
0: अच्छा अच्छा
1: वो भैया वो
0: हाँ?
1: वो
0: कुछ कहना चाहते हो?
1: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मेरा मतलब है कि
0: अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
1: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
1: आकर।
2: जी बात सुनो जरा।
0: हाँ हाँ ठीक है भाई, संपत्त तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
1: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते
0: अच्छा,
1: भैया।
0: अच्छा नमस्ते।
1: नमस्ते भाभी।
0: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
0: अरे ठीक ही कह रहा हूं। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: अब क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ हाँ जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
0: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे बाबूजी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
0: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
3: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
0: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
3: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
0: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
3: बाबा ने? वो जो पागल खाने में बंद थे?
0: हाँ हाँ वही।
3: बाबा ने आत्महत्या की?
0: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
0: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
3: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
0: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
3: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
0: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें।

0: समझे, एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
1: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
2: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
1: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
2: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
1: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
2: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
1: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
2: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल कर कहीं दम लूंगा। अब देश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तों, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
3: ये क्या कह रहे हैं आप?
4: अरे भाई क्या हो रहा है?
1: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता है।
2: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
4: आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। क्यों अनिल भतीजे?
2: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जो नहीं जाऊंगा।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिरास का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: अभिनेता आलोक गागडेकर से यूनुस खान की बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागडेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
2: जी जी जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: आलोक जी, रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
2: जी, यानी ये कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
1: जी,
2: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी और वहाँ एक लकड़ी का रेडियो था।
1: वो किस जगह रहती थी?
2: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हाँ। हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहाँ पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था यानी 11-12 साल का, और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स और इन सब के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: ओहो,
2: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक नया रेडियो ले आते। तो मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
1: कितनी
2: तो
1: प्यारी बात है कि जी, आप जी, इतना जी, ज्यादा जुड़े थे। तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
2: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
2: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है, तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
2: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहाँ टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, या तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी,
2: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
2: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था। क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है, तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
2: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ।

0: ओ
1: तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
0: तो बहुत
1: कि
0: दुखी हुए
1: बहुत
0: होंगे।
1: दुखी हो गया था। मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप NSD में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहाँ पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज़्यादा मेहनत करके मैं वहाँ पहुँचा, और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहाँ पर ली है।
0: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
1: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ
0: जी
1: बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है, और
0: बिल्कुल।
1: वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहाँ पर किशोर कुमार और रफ़ी साहब का, दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मज़ा आ
0: बिल्कुल, ये
1: जाएगा।
0: गाना सुनते हैं।
1: जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूँ, तो उन्होंने कहा कि 100%

0: करो लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी, जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजराती।
1: लगातार उनका तो बहुत अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छे प्लेज अभी भी चले आ रहे हैं।
0: हाँ अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
1: जी
0: भाई है।
1: जी
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये, जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह,
0: तीनों 3 वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला है।
1: वाह वाह।
0: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तुत्तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
1: मजबूत
0: वैसी,
1: है
0: हाँ, इंकलाबी कलम रही
1: तो ये
0: शुरुआत
1: सब
0: से।
1: उन्होंने लिखे।
0: उन्होंने ही लिखे दोस्त चौक सही नगर वस्तु तू,
1: ओ
0: और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहाँ थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि आप वहाँ जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मज़ा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट

0: सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे,
1: ओहो
0: तो वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे। तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में, तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है। तो हमने कहा कि हाँ भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीज़ों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाए वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मज़ेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे के एन पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहाँ पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर
1: बिल्कुल
0: केरला का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहाँ पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिन फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहाँ प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहाँ लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहाँ
1: अच्छा
0: पर, वहाँ थांगटा सीख कर आए। हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहाँ कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूँ अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहाँ से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है,
1: वाह सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज। यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास सब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहाँ पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज़ पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें
0: जी
1: करेंगे।
0: जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहां पर?
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो
1: हाँ
0: दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
1: वाह
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल अंदर है।
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। हर थोड़े से भई टूटे ना।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो
0: एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ, जिसका नाम रुक्ष्मणी है, और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बम्बई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बम्बई निकलना है।
0: तो वही ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रहे।
1: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को जाते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड़ में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी रहने के लिए, हॉस्टल, हवा, गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
0: जी जी जी।
1: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
0: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
1: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा

0: था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे
1: लो, अब ये समझाना भी मुश्किल है। हाँ,
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था, वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे,
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना
0: पे
1: अपना
0: सोते,
1: काम कर
0: अपना
1: पाए।
0: अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की, अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ
1: हाँ,
0: ऊंची ऊंट की।
1: अलग
0: तो
1: अलग
0: ये
1: तरह की
0: थिएटर
1: एक्टिंग।
0: एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे, और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा, और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से
1: जी, वो
0: मिलना,
1: एक प्रोसेस है कि वो
0: वो एक
1: करनी ही
0: प्रोसेस है,
1: पड़ती है।
0: वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए थे
0: नहीं
1: और
0: थे,
1: आपको
0: नहीं थे,
1: अपने
0: नहीं थे।
1: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: जी
1: पड़ता
0: जी जी
1: था।
0: जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जुहू में
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे,
1: जी
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जीन्स का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था क्योंकि वहाँ वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस, तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसी निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक पे। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की, और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमेक बन रही थी उस वक्त,
1: हाँ
0: दोबारा
1: हाँ
0: दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी,
1: हाँ
0: तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं,
1: बड़ा चले
0: हाँ, बड़ौदा
1: जाए
0: चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया, चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था, अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ा कि भाई यहाँ तक हो जाए। फिर वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो, तो मैं बोला चलो यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन, हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा,
1: हाँ,
0: और
1: और
0: पहली फिल्म मैंने की थी टशन,

0: ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी
1: मेरी। इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, अनिल कपूर
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ, अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी NSD में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था। तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंटआउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता, पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ, हमने हंसा। तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी, फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर देखना है,
0: 70mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, मराठा मंदिर अपने आप में एक
1: ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है, तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा?
0: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी। राजपाल यादव जी हो गए, और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे NSD रिपैट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया?
0: जी जी जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था, बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन। जी बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था।
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए हाँ, तो हम बोल देंगे।
1: हाँ।
0: तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ, तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ,
1: तुम हाँ करना।
0: हाथ करना। हाँ। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे, बड़ोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था।
1: हाँ।
0: वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर,
1: हाँ,
0: सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे

0: बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ। मैं बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई। हाँ, कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिग्नेचर बनाया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके हाँ
0: प्रेम रतन धन पायो, बिग बॉस
1: हाँ
0: और बजरंगी भाईजान।
1: ओके
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नज़दीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत में था।
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहाँ पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान,
1: बिल्कुल
0: हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है, अच्छा है, हाँ गुड गुड, ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान। तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता
0: मायने
1: है
0: रखता है।
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूँ
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल,
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: अदनान
1: है,
0: सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं अदनान समी की आवाज से।
0: जी।

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: हाँ। तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफ़ी, सिनेमा करता रहा। टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है, जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूं,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते
0: हैं। अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी जी,
1: तो क्या ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: और बहुत
1: हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
0: जी,
1: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहाँ से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमज़ोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमज़ोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा।
0: हाँ,
1: तो कैसे
0: ऑक्सीजन, हमेशा ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
1: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहाँ पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना कि थिएटर घर घर तक पहुँचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबकीय आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
0: अंकुर जी ने,
1: अंकुर जी की विधा है ये
0: जी।
1: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको, हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास

0: खानी है और मंच है
1: बस।
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम,
0: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझ कर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
1: बिल्कुल।
0: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया। मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो तो
1: घुमक्कड़। ये मराठी का एक प्रकार है,
0: नहीं ये
1: गुजराती का एक प्रकार है।
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
1: अच्छा,
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा,
0: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
0: नहीं नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माय गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतू बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांजा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना। एकदम डिफरेंट,
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले
1: तो
0: लिया,
1: एक मिक्स है,
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ
1: जी।
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं बस लाइफ सेट है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल,
1: तो उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी,
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यवसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है।
1: हाँ।
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं।
1: हाँ।
0: ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता है,
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है
1: जी,
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं, तो उन चीज़ों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है, जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो,
1: बिल्कुल,
0: मैं अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है, चलते चलते एक गाने की फरमाइश है।
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे
1: जी,
0: और रेणु जी की
1: बाबा
0: कहानी पर उन्होंने
1: तीसरी जो कसम बनाई,
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप एक सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: बाबा, तेरे मन में जरूर ये गाना सुनाते हैं जी आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना जी, समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी ज़िंदगी का एक संगीत है। और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे, जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बेखाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा।
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान

0: के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कैनेडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैंडिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said, "The meeting was very fruitful and all Gorkha leaders constructively presented their issues." After hearing the leaders, the Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry in a notification mandated a clear warning that these medicines shall not be used for children below 4 years of age in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, "fixed-dose combination shall not be used in children below 4 years of age," on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Networks Rules 1994 in the Gazette. Earlier, the Information and Broadcasting Ministry said in a statement that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration. The BJP today passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In a social media post, BJP President Nitin Naveen said the party strongly condemned and unequivocally opposed the Congress Working Committee's decision to sing only the first 2 stanzas of Vande Mataram in the party programmes. He added that the BJP is resolved to reject every attempt to subordinate the national song to communal pressure, political appeasement or narrow vote bank considerations.

अलग अलग इस फिल्म से ये भक्ति रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और यशुदास की, संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने। फिल्मों से भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

ये थी इस कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना, अभी तो जी लें इस फिल्म से। और इस भजन को गाया था किशोर कुमार व साथियों ने, संगीत दिया था सपन जगनमोहन ने। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, शाम के 5:25 और 35 सेकंड हुए हैं। समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला और मैं हूं आपकी दोस्त रेनू मनकोटिया। कार्यक्रम शुरू हो गया है युवा मंच। अगले कुछ पल हम साथ बिताएंगे, उन पलों में होगा संगम, फुल एंटरटेनमेंट, मधुर गीतों और जानकारियों और पहेलियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम ये रहता है और आप जुड़ते हैं हमारे संग कॉल के माध्यम से। तो फ़ोन नंबर वही है 01892224391। आप डायल करिए हमारे स्टूडियो का नंबर और बताइए हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न और पहेलियाँ। अगर आपके ये आप ये पहेली बुझा पाएँ तो और या हमारे प्रश्नों के उत्तर सही सही देंगे तो आप बन सकते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के हेलो जीनियस। तो फिर देर किस बात की, डायल कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर और तब तक हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, तभी आप डायल करेंगे ना। जी हाँ, तो ज्ञान की परीक्षा लेंगे, आसान से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और मज़ेदार पहेलियों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट हेलो जीनियस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ बताइए कि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं किसने लिखा। जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये किसने लिखा। हम कर रहे हैं इंतज़ार आपकी फ़ोन कॉल्स का और नंबर वही है 01892224391, 01892224391। जब तक कोई कॉलर हम संग जुड़ते हैं हम सुनवा रहे हैं आपको ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक। इंजॉय कीजिए।

0: जी हाँ, आज का हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा। बहुत ही इजी सा ये प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारे युवा दोस्तों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे नन्हे जो युवा हैं वो भी जुड़ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, साथ ही हम सोच रहे हैं कि एक पहेली भी आपके लिए हम दे दें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंच जाती है। जी हाँ, बताना है आपको कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंच जाती है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा। जी हाँ, तो एक कॉलर हम संग जुड़ गए हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम युवा मंच में आपका स्वागत है। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से?
1: मैं त्रिशा बोल रही हूँ, अंसोली से।
0: जी परीक्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: त्रिशा
0: कहाँ से?
1: अंसोली से।
0: अंसोली से, हाँ जल्दी से बताइए तो आज जो हमने आपसे प्रश्न पूछा।
1: हाँ जी,
0: बहुत ही इजी सा प्रश्न है ये। किसने लिखा था राष्ट्रीय गीत हमारा?
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जी बिल्कुल सही। और जो हमने पहेली पूछी आपसे, एक पहेली भी अभी हमने पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंच जाती है? थोड़ा सा आइडिया।
1: परीक्षा
0: थोड़ा और सोचिए। खुद तो वो वहीं पे रहती है लेकिन लोग चलते हैं, लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है।
1: सीढ़ी।
0: उस पर और सोचिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं, डायरेक्शन सही है आपकी। चलिए तब तक सोचिए, पर पहले हमारे प्रश्न का आपने उत्तर दिया है तो आप भी आज के कार्यक्रम के हमारे हेलो जीनियस तो हैं ही। ठीक है, त्रिशा कार्यक्रम में कॉल किया।

0: जी हाँ, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत जो है उसकी रचना किसने की। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की, ये आपने हमें बताना है। और साथ ही हम ने पूछी है एक पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंच जाती है। एक और कॉलर हम संग जुड़ गए हैं। हेलो,
1: रास्ते चलते नहीं मंजिल पे पहुंचा देते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रास्ते गान लिखा था।
0: बहुत ही जल्दी में थे ये जो भी हमारे लिसनर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रीय गीत लिखा था ये तो बिल्कुल सही है, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है, आंसर है सड़क। जी हाँ, सड़क पर चलते हैं इतने यातायात, खुद तो वो चलते नहीं, वहीं की वहीं रह जाती है लेकिन लोगों को मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाती है। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

0: हेलो,
1: हेलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्कार जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: विनोद कुमार बोल रहा हूँ, 16 कांगड़ा पालमपुर।
0: विनोद जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, टीवी के फिर करता हूँ।
0: जी, तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने की?
1: मैडम जी, ये रचना की बंगाली में कवि श्री चटर्जी पादशाह जी, 1876
0: जी
1: में की।
0: बिल्कुल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना
1: हाँ
0: की
1: जी,
0: थी।
1: 7 नवंबर 1875 को की थी मैडम जी। करो इसे संस्कृत और बंगाली भाषा में
0: बांग्ला
1: लिखा
0: में?
1: गया था।
0: जी,
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: जी
0: यह गीत उन्होंने 1870 के दशक में लिखा था और बाद में
1: हाँ जी
0: 1882 में
1: हाँ
0: प्रकाशित
1: जी
0: अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। इसका
1: हाँ
0: मूल
1: जी
0: पाठ संस्कृत और बांग्ला दोनों का मिश्रण है। जी हाँ, और
1: दोनों पास
0: 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, जबकि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसका रोचक तथ्य यह है कि ये जो वंदे मातरम का अर्थ है, ये हे मातृभूमि मैं तुम्हें नमन करता हूँ। जी हाँ विनोद कुमार जी, बहुत ही सही जवाब आपने दिया है। तो आप भी बनते हैं हमारे आज के हेलो जीनियस इस कार्यक्रम के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, जानकारियां लेते
1: मैडम जी,
0: रहिए।
1: धन्यवाद।
0: जी।

केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ अगला प्रश्न हमारे तमाम युवा साथियों के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने लिखा दिया? जी हाँ, फिर से हम आपको बता देते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। चलिए तब तक सोचिए, डायल करिए स्टूडियो का नंबर और साथ ही एंजॉय कीजिए ये म्यूजिकल ट्रैक भी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम है युवा मंच जी। हाँ जी
1: हाँ जी,
0: जी
1: आपने वो प्रश्न पूछा
0: पूछा
1: हुआ
0: था,
1: था।
0: जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जी हाँ
1: हमारे हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर
0: जी
1: शास्त्री,
0: जी बिल्कुल, उन्होंने ही ये
1: उनका
0: नारा
1: लिखा
0: दिया
1: हुआ।
0: था। जी हाँ, एक पहेली भी पूछ सकते हैं आपसे
1: हाँ, कोशिश करेंगे।
0: जी। अपना नाम तो बताइए पहले,
1: हाँ
0: नाम तो बताइए, कहाँ से बात हो रही है
1: जी,
0: किस।
1: मैं सुन रहा हूँ। हम जिला के सबौणी क्षेत्र में कुछ गाँव है, परमेश
0: जी, नाम क्या बताया आपने।
1: रणा।
0: जी, ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती जाती है? क्या है ऐसा जो जितनी बढ़ती जाती है ना उतनी ही कम होती जाती है, क्या है वो?
1: वैसे तो नाखून भी हैं, होते
0: नाखून काटने पड़ते हैं
1: हैं
0: ना।
1: और उनको काटते हैं तो कम हो जाते हैं,
0: जी,
1: फिर
0: वो
1: बाल
0: उनको
1: भी हैं।
0: काटना नहीं पड़ता, वो एक्चुअली में ही कम होती जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती जाती है? पर चलिए फिर भी आपने जी
1: चांद भी है, चांद भी ऐसा ही है, चांद
0: जी
1: भी अपने आप ही कम हो जाता है।
0: और भी कुछ सोचिए आप।
1: ऑप्शन
0: डेली
1: तो मैंने, हाँ
0: की जी, बिल्कुल। हमारी लाइफ जो है,
1: जी, क्या
0: हमारी जो लाइफ है वो डे बाय डे
1: चीज है।
0: कम
1: हाँ
0: होती जा रही है, उम्र बढ़ रही है ना।
1: जी, हाँ जी,
0: हाँ, तो इसका सही उत्तर जो है वो उम्र ही
1: बढ़ती भी
0: है।
1: है और कम
0: हाँ, और कम होती जाती है, जैसे
1: होती
0: जैसे
1: जाती
0: बढ़
1: है।
0: रही
1: हाँ
0: है
1: ये
0: वैसे वो
1: बिल्कुल,
0: कम होती जा रही है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी ठीक है।
0: चलिए, पहले एक प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया था, पहेली का नाम भी सही, फिर भी हमारे आप हुए आज के हेलो जीनियस। कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए, कार्यक्रम में कॉल किया,
1: धन्यवाद
0: शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, कार्यक्रम है युवा मंच और आज का सेगमेंट है हेलो जीनियस। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला प्रश्न। बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हाँ, इसका जवाब जल्दी से सोचिए और डायल करिए हमारे स्टूडियो का नंबर 0189224391, ये नंबर है हमारे स्टूडियो का। साथ ही हम सोच रहे हैं कि एक पहेली भी दी जाए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? जी हाँ, सोचिए। एक कॉलर हम संग आ जुड़े हैं, आइए देखते हैं कौन और कहाँ से बात हो रही है, किससे। हेलो।
3: हेलो
2: जी, कार्यक्रम युवा मंच में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
3: नमस्ते मैडम जी, मैं अतुल बोल रहा हूँ।
2: कहाँ से अतुल?
3: लंच से।
2: लांजनी से?
3: लंच लंच
2: लंच से जी। तो बताइए फिर, हमने जो प्रश्न पूछा आपसे।
3: कमल।
2: बिल्कुल सही, और एक पहेली भी हमने अभी मुझे पूछी थी आपसे।
3: पहेली हाँ। पता नहीं मेरे को, मैंने कॉल कर दिया ना अभी।
2: जी जी जी, फिर से हम आपको बता रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? अगर मैं बोलती बुझ जाती है तो आप बोलते प्यास, है ना? पर मैं बोल रही हूँ कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है। चलिए सोचिए, आपने एक प्रश्न का उत्तर तो बहुत से ही अच्छे से दिया है, तो आप भी अतुल हुए हमारे आज के हेलो जीनियस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगता है जब नए नए युवा दोस्त हम संग जुड़ते हैं, बातें करते हैं और प्रश्न और पहेलियों को भी बुझाते हैं।
3: आग आग बुझ जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही सही बिल्कुल सही, बहुत ही सही उत्तर दिया आपने। आप हो हमारे आज के हेलो जीनियस, क्योंकि पहले भी आपने ही बुझाई और प्रश्न का उत्तर भी आपने ही दिया। तो
3: थैंक यू।
2: जुड़े रहिए यूं ही कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हेलो जीनियस? उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा और खूब आनंद लिया। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों नई पहेलियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला सुनील कुमार से। अब अपनी रेडियो दोस्त रेणुमन कोटिया को दीजिए अनुमति, लेकिन चलने से पहले पहले एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मुझा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय होगा कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। शाम 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिम दर्शन रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम विज्ञान भारती रिले किया जाएगा और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात्रि 10:00 से 11:00 तक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 7:10 पर लुत्फ उठाइए का कार्यक्रम सुबह सुहाने का और 8:30 पर गाने सुहाने आप सुन सकते हैं। दिन में 12:00 समय रहेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए का और 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम सुनो सखी। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

शाम के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टी टास्क वर्कर के 4000 पद भरे जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति के आधार पर जारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग और राज्य बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्रियाशील पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के माध्यम से बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। बेलदार के पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन्हें पूर्व सरकार के समय ही समाप्त कर दिया गया है और इनके स्थान पर मल्टी टास्क वर्कर की नीति बनी है। विधायक मोहनलाल बराकटा के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 1,227 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे 1,081 करोड़ रुपए की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 और 2 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल जीवन मिशन को लेकर एक बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार लंबित राशि के शीघ्र भुगतान का मामला उठाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 6,395 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिससे 1,747 परियोजनाओं का निर्माण होना था। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा विधायक दल की मांग है कि अगर सरकार राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रही है तो इसकी वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विधानसभा में CWC के एजेंडे को लागू करवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
1: कल विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहां विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे, और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की विपक्ष के सदस्यों को दी जाए, और अगर उसमें कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ।
0: दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में क्या होगा इसका फैसला

0: सदन के अंदर ही होगा। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों को सदन की परंपरा के बारे में बताया गया था कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध नहीं रुका। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य रखने का मौका दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने पूरा जवाब नहीं सुना और नारेबाजी करते रहे।
1: नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य बड़ी डिटेल में रखा। उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब बनता है और वो सदन के नेता है। जब जवाब दे रहे थे तो फिर दोबारा से इंटरप्शन हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इंटरप्ट करने का कोशिश की, शोरगुल हुआ। फिर मैंने बार बार कहा कि भाई व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनी। हमने 2 बजे तक इसको एडजॉर्न किया। जैसे ही 2 बजे रीअसेंबल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा जो वक्तव्य जो मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मैंने उनको इजाजत दी और जैसे इजाजत दी फिर इंटरप्शन हो गया और दोनों तरफ से हो गया। और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद हाउस के अंदर व्यवस्था कायम नहीं हुई।
0: पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को पत्र भी सौंपा है। सुधीर शर्मा ने विधानसभा सत्र के बीच विजिलेंस द्वारा उन्हें जांच के सिलसिले में बुलाए जाने को मानसिक प्रताड़ना करार दिया है। सुधीर शर्मा ने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष उनके विशेषाधिकार हनन के मामले में कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ।

सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मौसम फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को गाया है लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह ने, बोल है गुलजार के और संगीत बद किया है मदन मोहन ने।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके

0: इस्तेमाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Need the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। राजा और रंग, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांच। आइए अब सुनते हैं आरोग्यम कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 को, यानी कि कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा हृदय रोग कारण लक्षण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न पूछने के लिए स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर डर आमीन हृदय रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम

आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 यानी कि कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फ़ोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 23 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम है युवा मंच। जी हाँ, अपना प्रिय ग्रामीण कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियाँ, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त रेनुमन गोडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो किसानों की मेहनत को आसान बनाने के साथ साथ उनकी आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, वो विषय क्या होगा, बात करेंगे इस लोक भजन या लोक भेंट को सुनने से पहले। तो आइए सुनते हैं ये लोक भेंट।

0: drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां मैं आपका एक बार फिर से स्वागत। जी हाँ, हम बता देते हैं, आज का विषय है कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, आज खेती केवल हल और बैलों तक सीमित नहीं रह गई है। विज्ञान और तकनीक ने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और खेती को लाभकारी बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नत बीजों की। आज वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाले बीज कम समय में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ रोगों और कीटों का भी बेहतर सामना करते हैं। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों बढ़ती है, ये तो आपको पता ही है।

जानकारियों के साथ साथ हम आपका मनोरंजन करना कैसे भूल सकते हैं। आइए सुनते हैं विनय अवरोल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa. कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियाँ, इसमें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। अब हम बात करेंगे मृदा परीक्षण की। खेत में कौन सा पोषक तत्व कम है, इसकी जानकारी मृदा परीक्षण से मिल जाती है। इससे किसान आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे लागत कम होती है और भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक प्रणालियां कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई करती हैं। इससे जल संरक्षण भी होता है और फसल का बेहतर विकास भी होता है। आज खेती में कृषि मशीनों का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रिपर, हार्वेस्टर और पावर बीटर जैसी मशीनें खेती के कार्यों को तेज और आसान बनाती हैं। इससे समय की बचत होती है और मजदूरी का खर्च भी कम होता है। अब खेती में ड्रोन तकनीक का भी उपयोग बढ़ रहा है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों और उर्वरकों का समान रूप से छिड़काव किया जा सकता है। इससे दवा की बचत होती है, समय कम लगता है और किसान का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। तो कार्यक्रम में एक बार फिर से समय हो चुका है एक लोक गीत सुनने का। तो आइए हम और आप सुनते हैं वर्षा कटोच की आवाज़ में ये लोक गीत।

जी हाँ, बात हम आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। विषय है आधुनिक तकनीक का उपयोग हमारे कृषि कार्यों में, कि कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय में आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज का किसान मोबाइल फोन के माध्यम से भी खेती कर रहा है। मौसम की जानकारी, मंडी के ताज़ा भाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह अब मोबाइल ऐप और इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। सही समय पर सही जानकारी मिलने से किसान बेहतर निर्णय ले सकता है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती भी आधुनिक कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। इनसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन सुरक्षित होता है और बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। सरकार भी किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, सिंचाई योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। किसान इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पॉली हाउस खेती, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों से किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

जी हाँ, चलते चलते हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आधुनिक तकनीक का उद्देश्य किसानों की मेहनत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और आय में वृद्धि करना है। यदि किसान नई तकनीकों को अपनाए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खेती करे तो निश्चित रूप से खेती एक लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। नई तकनीक अपनाइए, खेती को समृद्ध बनाइए और अपने गांव को खुशहाल बनाइए। जी हाँ, इसी संदेश के साथ आपसे लेती हूँ विदा और सुनवाती हूँ चलते चलते एक और प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां कराइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोफेनिलामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की

क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम के इस अंक को लेकर के मैं हाजिर हूँ शिवरंजन।
7: और मैं राजेंद्र
6: जी। किसान श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे। किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार, शनिवार को सायंकाल 7:10 से 7:45 तक आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा और ठीक उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। तो राजेंद्र जी, अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर उनको जानकारी देने वाले हैं।
7: काम की बातों में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोक गीतों से, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा सेब में पत्ता धब्बा रोग की पहचान और रोकथाम। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा से बातचीत करेंगे हेमराज
6: जी। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काम की बातों के अंतर्गत लिए गए विषय को लेकर के, जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट आखिर होता क्या है। केंचुओं का वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में प्रजनन और पालन पोषण ही वर्मी कल्चर कहलाता है। केंचुओं से विसर्जित पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थों को खिलाकर केंचुओं से प्राप्त विसर्जित पदार्थों को केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुओं की सहायता से अपघटनशील कार्बनिक पदार्थों से खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं की कास्ट, उसके अवशेष, मल व अंडे, कोकून, लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का मिश्रण सम्मिलित रहता है, जो भूमि को लंबे समय तक उपजाऊ व उपयोगी भी बनाता है।
7: जी हाँ, बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन विधि की। तो वर्मी कंपोस्ट भूमि की सतह और भूमि के अंदर गड्ढा बनाकर दो तरीकों से ये खाद बनाई जा सकती है
6: जी।
7: अगर बात करें शिवरंजन जी

0: भीम एक खाद बनाने की तो 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा ऊंचे और छायादार स्थान पर आपको बनाना है। सबसे निचली सतह पर 3 से 3.5 सेंटीमीटर मोटी ईंट और पत्थर की मिट्टी आपको बिछानी है। इस परत के ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर बालू की परत बिछानी है।
1: किसान भाइयों, इस मिट्टी को पानी छिड़क कर आपने नरम कर देना है। नरम मिट्टी के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटी गोबर की परत आपने बना लेनी है। गीला करने के बाद उसमें 1 किलो केंचुए प्रति गड्ढे की दर से आपने डाल देना है। इसके ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर घरेलू कचरा जैसे सब्जियों के अवशेष, फल के छिलके भी आप डाल सकते हैं। इस इकाई में 20 से 25 दिन का आवश्यकता अनुसार लगातार पानी का छिड़काव आपने करना है। अब इसे 2 मिलीमीटर मोटी जाली वाली छलनी से छानकर छाया में आपने सुखा लेना है। छनी हुई खाद को आवश्यकता अनुसार प्लास्टिक के थैलों में आपने भर देना है।
0: जी हाँ, बात करते हैं भूमि की सतह पर आप खाद किस प्रकार बना सकते हैं। कंपोस्टिंग माध्यम को धूप और बरसात से बचाने के लिए छप्पर डालना जरूरी रहता है। इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुसार छप्पर का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए छायादार स्थान का चयन करें। छप्पर की ऊंचाई इतनी रखनी चाहिए ताकि उसके नीचे खड़े होकर सभी क्रियाएं की जा सकें। छप्पर की चारों तरफ की दीवारों को खुला रखना चाहिए, परंतु जिस तरफ से धूप आती हो उस तरफ से बचाव जरूर करना चाहिए। इकाई की भूमि आसपास की भूमि से करीब 6 इंच ऊंची होनी चाहिए। बेड बनाने के लिए सबसे पहले फर्श पर 1 इंच मोटी रेत या बजरी की तह बिछानी चाहिए। इससे बेड में उचित नमी बनाए रखना आसान होता है। इसके ऊपर 3 इंच की ऊंचाई तक मोटा कचरा फसल अवशेष डालना चाहिए। इसके ऊपर कच्चा माल 18 से 20 इंच की ऊंचाई तक आपको डालना है। इस बेड की चौड़ाई 35 से 40 इंच बन जाती है और इसका आकार अर्ध गोलाकार होना चाहिए।
1: जी
0: बेड की लंबाई जितनी चाहे रखी जा सकती है। एक बेड से दूसरे बेड के नीचे आने जाने और अन्य कार्य करने के लिए उचित स्थान भी छोड़ना चाहिए।
1: किसान भाइयों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हेतु सामग्री व उसका प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं। केंचुए लगभग सभी जैविक पदार्थों का विघटन करके उन्हें कंपोस्ट में बदल देते हैं। सभी प्रकार के पशुओं का गोबर वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है, लेकिन गोबर बिल्कुल ताजा नहीं होना चाहिए। औसतन 15 दिन पुराना होना चाहिए। गोबर में मिट्टी नहीं होनी चाहिए। लगभग सभी फसलों के अवशेषों को केंचुओं को खिलाया जा सकता है, जैसे कि पौधों के डंठल, पत्ते, फलों व सब्जियों के छिलके, घास, फूस और पत्तियां। इन पदार्थों के यदि बड़े बड़े टुकड़े हों तो इन्हें काट कर छोटा कर देना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों को डालने से पहले इनका आंशिक विघटन करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया से कंपोस्ट शीघ्र बनती है। कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके भूमि पर धूप में बिछा देने चाहिए। इन पदार्थों में फिर सड़ा हुआ गोबर इस तरह मिलाएं कि 10 भाग गोबर और 3 भाग कार्बनिक पदार्थ हो। इसमें पानी छिड़कते रहे ताकि नमी का स्तर 10 से 40% तक बना रहे। इसको रोज हिलाते रहे। 2-3 सप्ताह बाद इस माध्यम का उपयोग कंपोस्ट के लिए किया जा सकता है।
0: जी हाँ, बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के कुछ एक विशेष गुण होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण इस्तेमाल किए गए आधारीय मादे सामग्री के अनुसार भिन्न होते हैं। वर्मी कंपोस्ट एंजाइम की क्रिया से केंचुए द्वारा पचाए गए कार्बनिक पदार्थों से तैयार चाय की पत्ती जैसा भुरभुरा दानेदार पदार्थ है, जिसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। अपनी दानेदार प्रकृति के कारण वर्मी कंपोस्ट भूमि के वायु परिसंचरण, जल धारण क्षमता को न केवल सुधारता है अपितु जड़ विकास में भी वृद्धि करता है। केंचुए और उससे संयुक्त सूक्ष्म जीव हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसे रसायनों को रसायन जो कि कंपोस्ट अहाते और कंपोस्ट में दुर्गंध पैदा करते हैं के विघटन में सहायक होते हैं। अंतिम रूप से तैयार वर्मी कंपोस्ट दुर्गंध रहित और मिट्टी के सुगंध वाला होता है।
1: जी किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीव और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट बैक्टीरिया, फंजाई, पौधों की बढ़वार को प्रोमोट करने वाले बैक्टीरिया, सेल्यूलोस व लिग्निन जैसे पॉलीमर्स को विघटित करने की क्षमता रखने वाले सूक्ष्म जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट में बहुत से यूमिक एसिड भी होते हैं, जिनका कार्य पौधों की बढ़वार व वृद्धि के साथ ही केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी व भूमि की भौतिक दशा सुधारना होता है।
0: देखिए, अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के लाभों की तो केंचुए खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से सिंचाई में बचत होती है। लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग से कम होती जा रही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वर्मी

0: कंपोस्ट का प्रयोग कर बढ़ाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को सक्रिय कर पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाता है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग फल, सब्जियों, अनाज की गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार कर किसान को उपज का बेहतर मूल्य भी दिलवाता है।
1: जी किसान भाइयों, केंचुआ खाद में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु, हार्मोन्स व यूमिक एसिड मिट्टी की पीएच को संतुलित करते हैं, जिसके कारण पोषक तत्व पौधों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि भी होती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से हानिकारक रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं पर निसंदेह अंकुश लग सकेगा, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। केंचुआ खाद के उपयोग में कम लागत में अच्छी फसलों का उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।
0: जी हाँ, तो देखिए, ये तो बात हुई वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और उनके लाभों के बारे में। तो देखिए शिवरंजन जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं
1: कृतिका तन्वर की आवाज में ये लोकगीत।

0: पत्ता धब्बा रोगों की पहचान एवं समाधान। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सेब में पत्ता धब्बा रोगों की पहचान एवं समाधान आज का हमारा ये विषय है। तो हम इसी विषय के अंतर्गत आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल सेब में कौन कौन से पत्ता धब्बा रोगों की समस्याएं आई है और ये किन किन क्षेत्रों में है।
1: हेमराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से सेब के क्षेत्रों में, सेब के पेड़ों के ऊपर अल्टरनेरिया और अन्य धब्बे तथा पत्ता झुलस रोग की समस्या आई हुई है। और ये समस्या शिमला जिला के क्षेत्रों में, जैसे कोटखाई, जुब्बल, ठियोग, रोहडू, चौपाल आदि में अधिक पाई गई है। विश्वविद्यालय में हाल ही में कुछ निरीक्षण टीमों का गठन किया और ये टीमें जिला शिमला, सिरमौर, किन्नौर, चंबा, कुल्लू आदि का इन्होंने सर्वे किया और ये पाया कि शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र के बदैच, मटलू, बागी, शेगलटा, रतनाड़ी, पनोग, बदेउन, जसला और द्योरीघाट तथा जुब्बल के नंदपुर, रुयलधार, कटासू और बटारगलू तथा ठियोग के भानी, देना, गडेरी, खड़ापत्थर, बडियार, जाख और रोडू के सेखल, धारा, कुमोली, समोली, कलास, खारला, कदियन में इस ये जो पत्ता धब्बा रोग हैं इनका प्रकोप अधिक पाया गया। और जो चौपाल का क्षेत्र है तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य जिला जिसमें कुल्लू, चंबा, किन्नौर है, वहां पर भी इन रोगों का जो प्रकोप है वो बहुत कम मात्रा में पाया गया है।
0: डॉक्टर साहब, लगभग पूरा अपर शिमला का पूरा ही क्षेत्र आपने बताया, लगभग इन सभी क्षेत्रों में ये समस्याएं जो है पत्ता धब्बा रोग की बनी हुई हैं। तो जो क्षेत्र आपने बताया डॉक्टर साहब, आप किसान भाइयों को बताइए कि इन सभी क्षेत्रों में पत्ता धब्बा रोगों का प्रकोप जो है वो कितना गंभीर है।
1: हाँ, जहाँ जिन क्षेत्रों में मैंने बताया कि पत्ता धब्बा रोगों की समस्या है, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कोटखाई का जो क्षेत्र है, जिन गांवों का हमने निरीक्षण किया है, उसमें 30% तक कोटखाई क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप है। उसी तरह से जुब्बल में ये कम है, 20% तक, रोडू में भी 20% तक, चिड़गांव में और भी कम, 15% तक, ठियोग में 10% तक तथा अन्य क्षेत्रों में, जैसे जिसमें चौपाल का क्षेत्र भी है, उसमें लगभग 5% तक ही इन पत्ता धब्बों का रोगों का प्रकोप पाया गया है।
0: आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि पत्ता धब्बा जो रोग है उनके लक्षण क्या होते हैं।
1: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि किसान भाइयों को ये भी थोड़ा सा संशय बना हुआ था कि ये पत्ता धब्बा रोग है क्या। तो पत्ता धब्बा रोगों का जब हमने निरीक्षण किया तो पत्ते पर धब्बे जो हैं वो कई तरह के पाए गए, जो विभिन्न फफूंदों के कारण होते हैं। जैसे कि पहले वाले समय में अल्टरनेरिया के धब्बे आते थे, जिसको किसान अपनी अपने आप भी पहचान जाते थे और पहचानना भी आसान होते थे। जो अल्टरनेरिया के धब्बे हैं वो छोटे गोलाकार धब्बे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, वह केंद्र में थोड़े से, उनका जो केंद्र है वो थोड़ा सा हल्के भूरे रंग का होता है। परंतु इसके अलावा पत्तों पर इस तरह के धब्बे पाए गए जो किनारों से शुरू हुए और झुलस रोग में तब्दील हो गए, जिन्होंने पत्ते के ऊपर अंग्रेजी का, अगर हम वी, विक्ट्री वाला वी का निशान देखें, तो उस तरह के वो धब्बे आगे की तरफ बढ़े पत्ते के किनारों से होते हुए। इसी तरह से पत्तों के बीच में भी धब्बे पाए गए जिनका आकार बड़ा बन गया और वो जो धब्बे थे वो धारीदार धब्बे बने। इसके साथ ही पत्तों का पीलापन होना भी पाया गया और धीरे धीरे पत्ते जो थे वो झुलस गए और झुलस कर जमीन पर गिर गए। तो ये मुख्य लक्षण इन धब्बों के हमने पाए हैं।
0: बहुत ही उम्दा जानकारी डॉक्टर साहब के इसके लक्षण क्या रहे पत्ता धब्बा रोग के हमारे किसान भाइयों को आपने दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि पत्ता धब्बा रोगों में कौन कौन से फफूंद मुख्य तौर पर पाए गए हैं।
1: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम इन पत्ता धब्बों के कारण को पहचाने कि किस वजह से हो रहे हैं, कौन सी फफूंद है जो इसके लिए कारक हैं। तो सर्वे के दौरान जब निगरानी हमने बगीचों की करी, उसमें हमने ये पत्ते, बीमारी वाले पत्ते एकत्रित किए, माइक्रोस्कोप में इनका अवलोकन किया, लैब में कल्चर किया और ये पाया गया कि एक ही पत्ते पर और एक ही पत्ते के धब्बे पर तीन चार तरह के फफूंद पाए गए। और उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये कंप्लेक्स पत्ता धब्बा, कंप्लेक्स रोग, ब्लाइट, ब्लॉच की तरह पनपा है। कल्चर में जो मुख्य फफूंद पाए गए उनमें 90% अल्टरनेरिया के विभिन्न प्रकार के

0: फफूंद, उसी तरह से जो अन्य, जो पहले इन फफूंदों की मात्रा प्रकोप कम रहता था वो भी पाए गए, जैसे कि 84% जो हमने कल्चर किया उनमें बोटरियो डिप्लोडिया, बोटरियो सेफेरिया, 21% कोलेट्रोट्राइकम और 5% कर्बुलेरिया और बोट्राइटिस पाया गया। इन सब जो फफूंदे हैं इनका हम डीएनए और मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन का काम भी कर रहे हैं और हमें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि इन फफूंदों की कौन सी जो प्रजातियां हैं वो ज्यादा गंभीर हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, पत्ता धब्बा रोगों में कौन कौन से फफूंद हैं ये भी जानकारी आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को दी। तो डॉक्टर साहब, किसानों और बागवानों को पत्ता धब्बा रोगों के प्रबंधन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
0: हाँ, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन पत्ता धब्बा रोगों को के लिए हमें इस वर्ष भी नियंत्रण करना है, इस वर्ष भी सोचना है और अगले साल के लिए भी सोचना है। तो हमें जो कार्य करने हैं वो अपने बगीचे को कैसे हम हवादार बनाएं, उसमें हवा का पूरा सर्कुलेशन हो, उसके लिए हम क्या करें, बगीचे में लंबी घास न बढ़ने दें, झाड़ियों को हटाएं समय समय पर, सही ट्रेनिंग और प्रूनिंग करें पौधों की और ग्रसित पत्तों एवं अन्य भागों को इकट्ठा करके गड्ढे में डालकर सड़ा दें, खादों एवं पोषक तत्वों की सही आपूर्ति करें, खरपतवारों का लगातार नियंत्रण करते रहें जिससे कि बगीचे में आर्द्रता ना बने, अपने बगीचे की लगातार निगरानी करें ताकि जब भी पत्ता धब्बा के निशान दिखाई दें तो हम समय पर नियंत्रण प्रक्रिया सही जो उपयुक्त विधि है उसका हम शुरू करें। कमजोर पौधों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, जैसे मैंने बताया जिन पौधों पर रूट रॉट, कॉल रॉट या बोरर की समस्या है उनके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करें, उनका विशेष ध्यान रखें क्योंकि वहीं से रोग की शुरुआत होती है। पोषक तत्वों, कीटनाशकों एवं फफूंदी नाशकों का सही मात्रा में उपयोग करें और अनुमोदित मिश्रण ही उपयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि क्या रसायनों से भी इन रोगों का नियंत्रण हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो कौन कौन से रसायन हैं जो हमारे किसान भाई प्रयोग में ला सकते हैं?
0: ये जो मैंने पहले बताया, अगर इन सब कार्य को करने के उपरांत भी हमें अपने बगीचे में पत्ता धब्बा रोगों की समस्या दिखाई देती है तो हमें जो विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग द्वारा छिड़काव सारणी अनुमोदित की गई है और उसमें कई प्रकार के रसायन दिए गए हैं जो एक टेस्टिंग के बाद दिए गए हैं, उनका ही हम प्रयोग करें अपनी तरफ से या बाजार से, जो सारणी में रसायन नहीं लिखा है उसका उपयोग ना करें और इसमें भी जो सही मात्रा है उसी का उपयोग करें और फफूंदी नाशकों को बदलते रहें, लगातार एक ही फफूंदी नाशक का प्रयोग ना करें, अनुमोदित मिक्सचर ही उपयोग करें। छिड़काव का जो अंतराल है वो हमने छिड़काव सारणी है उसमें 10 से 15 दिन का दिया है तो वो 10 से 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए। पत्ता धब्बा रोगों के लिए यदि फफूंदी नाशक की फिर भी जरूरत पड़ती है तो हम उपयोग कर सकते हैं मैंकोजेब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में, प्रोपीनेब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में और इसी तरह से जीरम 600 ग्राम 200 लीटर पानी में। ये जो प्रोटेक्टिव रसायन है वो है, परंतु इसके साथ जो हमारे सिस्टेमिक हैं जैसे हेक्साकोनाजोल और जिनेब का मिश्रण जिसे हम 500 ग्राम 200 लीटर पानी में डालकर उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह से कार्बेंडाजिम और फ्लुजिलाजोल 160 ml 200 लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। ये अल्टरनेरिया व अन्य फफूंदों से जैसे बोटुलिस्फेरिया, बोटुलिडिप्लोडिया, कर्बुलेरिया, कोलेट्रोट्राइकम आदि जो फफूंदे हैं उनको भी नियंत्रण करेंगे। और साथ में ही मैं ये भी बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आजकल मौसम में अधिक नमी हुई है, वर्षा अधिक हो रही है जो जुलाई वाले महीने में कम थी, उसकी वजह से तापमान जो है वो कम हुआ है और तापमान लगभग 22 से 23 24 डिग्री के आसपास है। तो इस समय में जो हमारी पहले वाली समस्या है जिसको हम असमयिक पतझड़ रोग या प्री मेच्योरली फॉल की समस्या कहते हैं, उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रकोप बगीचों में पेड़ों के ऊपर देखा जा रहा है, तो उसके लिए भी ये जो मैंने आपको रसायन बताए वो उसके लिए भी उपयोगी होंगे। अन्यथा जो और रसायन हमारे छिड़काव सारणी में दिए गए हैं उनका उपयोग भी हम प्री मेच्योर आसमयिक जो पतझड़ रोग है उसके लिए कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब अंत में आप किसान और बागवान भाई बहनों को क्या सुझाव देना चाहते हैं?
0: हाँ, मैं किसान और बाग

0: भगवान भाइयों को अंत में ये सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जिन बगीचों में पत्ता धब्बा रोग की समस्या आई है और पत्ते भूमि पर जमीन पर गिरे हैं, उन पत्तों को और उन बगीचों में फल तुड़ान के उपरांत गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालकर सड़ा दें, या बगीचे में जमीन पर गिरे हुए पत्तों पर 5% यूरिया का छिड़काव अगर हम करते हैं तो ये पत्ते जो हैं वो जल्दी से सड़ जाएंगे, जिससे कि अगले साल के लिए इन फफूंदों का जो बीज है वो नाम बने। तो यही मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बगीचों को साफ सुथरा और बीमारियों से दूर रखने के लिए जो मैंने लास्ट में कहा कि जो सैनिटेशन है, साफ सफाई है, वो बहुत ही जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और सेब में पत्ता धब्बा रोगों की पहचान और उसके समाधान के बारे में आपने किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेमराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनिए जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था सेब में पत्ता धब्बा रोग की पहचान एवं रोकथाम। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे हेमराज शर्मा। तो किसान भाइयों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन करवाने का। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कल के आकर्षण की। कल के आकर्षण में शिवरंजन जी हम बात करेंगे रसायन मुक्त विधि द्वारा कीट नियंत्रण की, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी।
1: जी
0: तो शिवरंजन जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार,
2: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जो आकाशवाणी शिमला से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से ही प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
3: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SEID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
2: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
3: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।
4: हम

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन

0: भी रहा हंगामेदार। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जल शक्ति विभाग में जल्द भरे जाएंगे मल्टी टास्क वर्कर्स के 4000 पद। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 1871 परिवारों को मिली राहत राशि, 1260 परिवारों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और प्रदेश के 6 जिलों में आज कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट, कल मौसम के साफ रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में आज राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा और सत्र के दो दिनों में करीब 2 घंटे 15 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल सकी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत बीते रोज वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर हुए कथित अपमान का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा विधायक दल की मांग है कि अगर सरकार राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रही है तो इसके वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
2: कल विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहाँ विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे, और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ।
1: दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में क्या होगा इसका फैसला सदन के अंदर ही होगा। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों को सदन की परंपरा के बारे में बताया गया था कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध नहीं रुका। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य रखने का मौका दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने पूरा जवाब नहीं सुना और नारेबाजी करते रहे।
3: नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य बड़ी डिटेल में रखा, उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब बनता है और वो सदन के नेता है। जब जवाब दे रहे थे तो फिर दोबारा से इंटरप्शन हो गया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इंटरप्ट करने का कोशिश की, शोरगुल हुआ। फिर मैंने बार बार कहा कि भाई व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनी। हमने 2 बजे तक इसको एडजॉर्न किया। जैसे ही 2 बजे रीअसेंबल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा जो वक्तव्य जो मैं नहीं पूरा कर पाया तो मैंने उनको इजाजत दी, और जैसे इजाजत दी फिर इंटरप्शन हो गया और दोनों तरफ से हो गया। और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद हाउस के अंदर व्यवस्था टाइम नहीं हुई।
1: बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सदन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है जो बेहद निंदनीय है। भाजपा के विधायक असल मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है।
4: राष्ट्रीय गान का अपमान किया है पूरा कांग्रेस विधायक दल, इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है से उसका ध्यान भटकाना चाहती है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया

0: रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल एट द रेट AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टी टास्क वर्कर के 4000 पद भरे जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति के आधार पर जारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग और राज्य बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्रियाशील पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड में भी खाली पदों के अनुरूप बिजली मित्रों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली मित्रों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बेलदार के पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन्हें पूर्व सरकार के समय ही समाप्त कर दिया गया है और इनके स्थान पर मल्टी टास्क वर्कर की नीति बनी है। विधायक मोहनलाल बराकटा के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 1,227 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे 1,081 करोड़ रुपए की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 और 2 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल जीवन मिशन को लेकर एक बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार लंबित राशि के शीघ्र भुगतान का मामला उठाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा व प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश में 1,871 प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है, जबकि 1,260 प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबित मामलों में अधिकांश प्रभावित परिवारों ने राहत के लिए RMS पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 1 अगस्त तक आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार से 802 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसें निगम के लिए बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया बन रही हैं। HRTC धर्मशाला के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम को ईंधन खर्च में बचत हो रही है और इन बसों में प्रदूषण व शोर कम होने से यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि बेहतर रूट प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी चार्जिंग के चलते बसों का औसत दैनिक संचालन 217 किलोमीटर तक पहुंच गया है।
1: धर्मशाला डिपो में जो 5 इलेक्ट्रा गाड़ी आई है, उनकी जो एवरेज पर गाड़ी पर डे यूटिलाइजेशन जो है वो 217 पहुंच गई है। ये बहुत आरामदायक है, लोग इनमें बैठना पसंद कर रहे हैं। इसके कारण क्या है कि जो हमारी आय है रूटों पे प्रति किलोमीटर, उसमें इजाफा हुआ, उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल साउंड फ्री गाड़ियां हैं, पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल गाड़ी है उसका खर्चा जो है 12-13 रुपए के करीब आता है। तो हम लोगों ने इनको रूटीन के हिसाब से ऐसा बनाया कि जो गाड़ी है जहां से आ चले।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे, हालांकि राज्य के कई स्थानों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा के चलते हुए भूस्खलन के कारण 98 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 89 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों द्वारा इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 23 अगस्त को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जल शक्ति विभाग में जल्द भरे जाएंगे मल्टी टास्क वर्कर्स के 4000 पद। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 1,871 परिवारों को मिली राहत राशि, 1,260 परिवारों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर।

0: प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और प्रदेश के 6 जिलों में आज कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट, कल मौसम के साफ रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक समूह को अराजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैच वाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाना है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बार्नेस कोर्ट शिमला 2 के कार्यालय में 10 सितंबर 2026 को 5:30 तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी यानी कि कैटेगरी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। 10 सितंबर 2026 के उपरांत प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के 9 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पदों को भरा जाना है। आयु सीमा में सामान्य वर्ग के लिए आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है। आवेदक हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का सदस्य होना चाहिए या भूतपूर्व सैनिक। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कम जमा 2 स्तर की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य या सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र वो रखता हो। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संचालित एलिमेंट्री फायर कोर्स उत्तीर्ण किया गया हो। उम्मीदवार समूह गौ के पद हेतु तभी पात्र होगा यदि उसने 10वीं तथा जमा 2 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी स्कूल या संस्थान से उत्तीर्ण की हो, यद्यपि ये शर्त हिमाचल के स्थायी निवासी पर लागू नहीं होगी। प्रत्येक आवेदक केवल एक ही श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। यदि कोई आवेदक एक से अधिक श्रेणियों से आवेदन करता है अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करता है उस श्रेणी का निर्धारित एवं वैध प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि या उससे पूर्व जारी किया हुआ होना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात जारी किया गया प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप दूरभाष नंबर 0177-26-2994-5 या फिर 0177-26-22-945 या ईमेल आईडी fire@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। ये थे रोजगार समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये
4: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM एंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

सब इस कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सास्वती के गाए इस गीत के साथ।

मिली जुली गीतों का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर व साथियों का गाया हुआ।

उपकार फिल्म से ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर का गाया हुआ। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और बोल हैं गुलशन बाबरा के।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 9:00 न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

भारती। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत

0: ये महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच

0: युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
2: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ. असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Center announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF badminton.

0: में 167 सड़क मार्ग अवरुद्ध। सिरमौर के बांगनीधार माइनिंग क्षेत्र में मलबे में दबे तीनों मजदूरों के शव बरामद। और भाजपा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर कम करने को बताया प्रदेश सरकार की विफलता। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शिमला में आरंभ हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय गीत सत्र के समापन पर गाने की बात कही, जिस पर विपक्ष नहीं माना और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट में ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदन के बाहर आ गया। बाद में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान सत्र की शुरुआत में और राष्ट्रीय गीत सत्र के अंत में गाया जाता है, लेकिन भाजपा नियमों के विपरीत केवल राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान, अध्यक्ष मोदी ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सब उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना। जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ इसको कभी सहन नहीं करेंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रीय गीत गाने की विनम्र मांग की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
2: एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। परंपराएं तो बनाई जाती है और वंदे मातरम क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अपमान।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा विधायक दल की मांग है कि अगर सरकार राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रही है तो इसकी वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विधानसभा में CWC के एजेंडे को लागू करवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
3: कल विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहाँ विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे, और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ।
0: दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में क्या होगा इसका फैसला सदन के अंदर ही होगा। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों को सदन की परंपरा के बारे में बताया गया था कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध नहीं रुका। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य रखने का मौका दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने पूरा जवाब नहीं सुना और नारेबाजी करते रहे।
4: नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य बड़ी

0: जेल में रखा, उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब बनता है और वो सदन के नेता है। जब जवाब दे रहे थे तो फिर दोबारा से इंटरप्शन हो गया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इंटरप्ट करने का कोशिश की, शोरगुल हुआ। फिर मैंने बार बार कहा कि भाई व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनी। हमने 2 बजे तक इसको एडजॉर्न किया। जैसे ही 2 बजे रीअसेंबल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा जो वक्तव्य जो मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मैंने उनको इजाजत दी, और जैसे ही इजाजत दी फिर इंटरप्शन हो गया और दोनों तरफ से हो गया। और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद हाउस के अंदर व्यवस्था कायम नहीं हुई।
1: कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के खिलाफ विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय गान के अपमान के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सदन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, जो बेहद निंदनीय है। भाजपा के विधायक असल मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है।
2: राष्ट्रीय गान का अपमान किया है पूरा कांग्रेस विधायक दल, इससे बहुत दुखी है। और हमारा ये प्रयास है, ये जो सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे, हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है।
1: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि के लंबित मामलों को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में करीब 20,000 नौतोड़ मामले लंबित हैं और ये अधिकार 20 बीघा से कम भूमि वाले लोगों को दिया जाना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत इसकी शक्ति है और पूर्व सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नौतोड़ मामलों की मंजूरी सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे बंजर जमीन भी आबाद होगी।
3: जनजातीय क्षेत्रों के लिए गवर्नर मोदी को संविधान के अनुच्छेद 5 में बहुत सारी शक्तियां दी गई है। वर्तमान गवर्नर साहब से अब मैं जो है पिछले कल दोबारा मिला और उनको फिर मैंने सारी वस्तु से अवगत कराया। अभी उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें कार्रवाई करनी है तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र फैसला करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर हमने ये नौतोड़ जनजातीय क्षेत्रों में खासकर बॉर्डर एरियाज है हमारे, जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ की सारी भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, अगर ये भूमि हमने आवंटित किया होता तो आज 3 साल बाद जो है उनमें फल भी आ गए होते।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग में पहली बार लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ने का फैसला लिया गया है और सरकारी नौकरियों में सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर लीक मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
2: हमारी सरकार में भर्ती का रिकॉर्ड टूट रहा है, भर्तियां की जा रही है, दिन प्रतिदिन की जा रही है, एक भी पेपर लीक कर दिया बता दीजिए। हमारे एजुकेशन के पेपर हुए, हमारे बैच वाइज भर्तियां हुई, हमारे असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के पेपर हुए, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जो राज्य चयन आयोग से चुनकर आएगा वो निश्चित रूप से अगर वो टेम्परेरी में तो आने वाले भविष्य में वो रेगुलर भी होगा, क्योंकि हम आउटसोर्स को खत्म करना चाहते हैं, खासकर मेडिकल और एजुकेशन में SMC को हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए और टीचरों की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं।
1: हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से शिक्षकों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रधान सचिन जसवाल ने कहा कि मार्च 2025 और 26 में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं का मेहनताना भी अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अप्रैल 2025-2026 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की राशि भी शिक्षकों को अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने इस भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की है।
4: शिक्षकों का जो मार्च 2025 में शिक्षकों का मेहनताना वो आज तक हमें नहीं मिल पाया है। उसके बाद

0: वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते मलबे में दबे 3 कामगारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने मयाड़ क्षेत्र में हुई बादल फटने की घटना से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य तेज कर दिया है। क्षेत्र के करपट में फंसे 95 लोगों में से 92 को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया गया है।
1: लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित चोखंग नेनगार संपर्क मार्ग और मयाड़ क्षेत्र में प्रशासन ने राहत एवं बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। चोखंग नेनगार सड़क का करीब 800 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार राहत और सड़क बहाली कार्य में जुटी हुई है और मौसम अनुकूल रहा तो कल शाम तक मार्ग को यातायात के लिए खोलने की संभावना है। वहीं मयाड़ के करपट में बाढ़ के बाद जल स्तर घटने से स्थिति में सुधार हो रहा है। करपट में मौजूद 95 लोगों में से 92 लोग, जिनमें 7 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं, सुरक्षित राहत शिविर में पहुंच चुके हैं। स्थानीय महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 चरवाहों को झूले के माध्यम से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की गई है। करपट पुल अभी पानी में डूबा हुआ है, जबकि उड़गोस नाला पुल की मरम्मत हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही करने से बचने की अपील की है।
0: इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 166 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि 130 बिजली ट्रांसफार्मर और 222 पेयजल योजनाएं ठप हैं। प्रदेश भाजपा ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों का कैडर घटाने के प्रदेश सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकारियों का कैडर घटाने का ऐलान जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर मुख्यमंत्री अपने आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का विफल प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से अफसरों में घुटन का माहौल है और वे मजबूरी में हिमाचल छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति केवल कैडर घटाने और आंकड़ों की बाजीगरी से नहीं सुधरेगी। सरकार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा, वित्तीय अनुशासन लाना होगा और फिजूल खर्ची में कटौती करनी होगी और प्रशासनिक अधिकारियों को स्वतंत्र और सकारात्मक कार्य वातावरण देना होगा। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमदर्शन, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 9:30।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिमदर्शन, जो आकाशवाणी शिमला से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम विज्ञान भारती रिले किया जाएगा।
4: श्रोताओं नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओं, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया। और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवा

0: बांटेंगे एक भेंटवार्ता। 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत, इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविन्द्र धर। एक और भेंटवार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव। क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे इस संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी, उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायसा कहते हैं, बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायसा जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहाँ पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय ये रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है, और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
2: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सीवी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रमन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रमन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
1: स्कैटरिंग।
2: तो वो रमन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रमन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है।
2: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल

0: डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो। अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था। वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को, उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष है मटेरियल साइंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओ नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यौम आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है, ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को, और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए? मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
2: अपनी भाषा में, जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं? ये इतना आसान है क्या?
3: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात होती है। प्रोसेसिंग वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
2: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो, अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
3: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो

0: बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
1: जी जी।
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है, अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें।
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स के पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का। अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
2: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
2: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के

0: फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरीके की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर, जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे है?
0: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
1: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
2: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है। जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
3: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
2: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
3: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
2: बिल्कुल,
3: हम
2: बिल्कुल।
3: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
2: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
3: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
4: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को

0: जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे, प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री श्रेयस नारायणन। श्री श्रेयस नारायणन is a top-grade Carnatic vocalist of Akashwani, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshidhar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M. A. Venugopal and late P. S. Narayanaswamy, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Sri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program, he will be accompanied by Srimati S. R. Rajashree on the violin, Sri A. Balakrishna Kammat on the mridangam, and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam.
0: Sri Shreyas Narayanan apne gayan ki shuruaat Sant Tyagraj ki kriti निन्नाड नेला से कर रहे हैं, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद कृति निन्नाड नेला, अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग कन्नड़ा सेट टू आदि ताल।

0: अप्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to कामाक्षीम कल्याणी, a composition of मुत्तु स्वामी दीक्षितर in the raga कल्याणी, set to रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is ताये त्रिपुर सुंदरी। In the rag, शुद्ध सावेरी, set to खंड चापू ताल, composed by पेरिया स्वामी तूरन।

0: पद है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथि कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदिताल।

0: तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashree on the violin, Shri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Shri Vaikim N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल,
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
3: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण व मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders today in Siliguri, West Bengal. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India-Bangladesh ties must be based on mutual respect. Speaking at the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi today, he said, for any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. India wants positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity.
2: For any relationship to work, it has to meet the test of mutual interest. It has to work for them, it has to work for us. There has to be a fair degree of my recognizing and respecting